मीरा कजम कलीली होली कजम खोयो है आचू गपी गड़े खाली कलेरम वो तो पजामा आयो